पौड़ी आपे ही करना कि ओ कल आपे ही तय धारी है। देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो भी सारी है। आपड़ हथी अपना आपे

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं भाग लिलारे उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल घोर समुद्र मैं बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो हौ अपराधी गुन है गार हौ वे मुख मंदा चोर जार जुआर हौ पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देस ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विसास घाती अकिरत कान मैं को ना रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी अवर ना सूजै दूजी ठाहर हार परयो तौ द्वारी लेखा छोड़ अलेख छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी साध

नानक दास संत पाछै परेओ राख ले हो एह बारी अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो

पौड़ी वड़ी हो डाय पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर न दुदाई तुद कर माण महता दे दे अपना आप जर।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आज संघरिय। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

नानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत पुज खान बहोरे रच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलिश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

0: की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय।

दान बबेक दान विसाहु दान प्रूसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म।

भयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो गुण निदान रिद भीतर वस्या।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा

0: कर आसू दिठो चाओ दिठो चाओ
1: कोड़ी अपने आप साजी अपने रचे नाओ दुख दृश्य जी कर आसू दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद तो आओ कर आसन बिठो चाओ कर आसन बिठो चाओ।

मैं अजात है मैं कर्म कमाहे हो मैं ए वंदना फिर जो नि मैं कथो पुजै कित संजमे जाए हो मैं हुक्म पै कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोख

संतोखी जिन सचो सत्य आया उन मंदे पै न रखियन का सुख तन कमाया उन दुनिया तोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देवे चढ़े सिवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

राजा कूट प्रजा कूट सब संसार कूट मंडप कूट माड़ी कूट बैसनहार कूट सोयना कूट रूपा कूट पहननहार कूट काया कूट।

0: सच काल कूड़वर्त कल कलख बेदाल बियो बिच पतले गपकुक बेदाल जे इक होय ता उकवेर तीरत हो नान पाहे बारा कोरे रंगना सोय पै विच कुम चढ़ाए सरम पाओ तन हो नान पत्ती जे रपै कूड़े सोई ना कोई महला पहला
1: लब पाप दोरा जा मैं था कूड़ हो आसकिदा काम ने सत पुछिय बै बै करे विचार अंदर ऐत ज्ञान भी होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी ने चेवा जेवा वरु करे सिगार चाकू के बाद दागा बै जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संदेत अर्पया

कै जनम मरण दुख होवै सिफत खुसामदि नूर अरसहुँ कुरसहुँ चटिया। तुदृठे सचे पातशाह मल जनम जनम दी सजना सचा पातशाह सिर सहांदै।

शकेत फल फिके फुल बक बक कामना में पद मिटत निमी नानका गुण चंगे या तत्।